0: सतगुरु गुणी निधान है गुण कर बसे अगुणिया
1: सर्व गुण निधान सतगुरु गुणी निधान है सर्व गुण

रहत को खुशी न आयो। हर नाम छोड़ तू जै लगे, हर नाम छोड़ तू जै लगे, इनके गुणों क्या कहूं।

पावन बचन तन तन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी सर्वलोक ग्रंथ विच उचारण कर रहे ने। ये सर्वलोक ग्रंथ विच पातशाह जी ने उस समय शब्द उचारण किया है जदो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी नूं गद्दी बख्शिश की है। सिखा ने बेनती की, महाराज तुसी जा रहे हो तो पिछों पंथ की पैरवाई कौन करेगा, कौन पंथ का सहारा है? तो साहिब गुरु कलगीधर पातशाह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मत्था टेक के हुक्म किया कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी जे किसी ने गुरु साहबान के प्रतख दर्शन करने ने तो गुरु ग्रंथ साहब चो कर सकता है। तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने गुरियाई बख्श के गद्दी दे के सिखा नु कहा अज तो बाद कोई गुरु देहधारी नहीं होगा, अज तो बाद शब्द गुरु है। गुरु ग्रंथ साहब जी मत्था टेक के सारे ने इथो सेध लैनी है। तो सतसंग जी आओ बड़े प्यार श्रद्धा के नाल सर्वरोग ग्रंथ का पावन शब्द सरवण करो। साहब गुरु कलगीधर पातशाह

सरबत संगत साहबां दे पावन दरबार च हाजिर भर के गुरु के कीर्तन दे नाम जोड़िया है। गुरु साहब सरबत संगत दीआं हाजरियां दर प्रवान करन, सरबत संगत दे कदम लिखे लाउण, किरत कमाईआं सफल अपने पवित्र नामदान की दात बख्शिश करन। नौजवान वीरां दा धन्नवाद है कि बड़े प्यार दे नाल दासां नूं याद करदे ने, हुक्म ला के तो कीर्तन का रस प्राप्त करते हैं। तो हुक्म किया कि सवेरे आसा जी की वार का कीर्तन भी आप जी श्रवण कराओ, तो हुक्म मन के संगतां दा नौजवान वीरां दा आसा जी की वार का कीर्तन भी गायन करना है। आप जी ने उस विच भी इस तरह ही हाजरी भरनी है अमृत वेले दे शब्द ते जदों गुरियाई बख्शिश की है, जिस वेले सूही राग का जो शब्द आया सी वह भी आप जी नूं अब चल नगर गोबिंद गुरु का नाम

बादशाह आप कृपा कीती है और असी अपने गुरु अगे बेनती करनी है। महाराज धन गुरु रामदास पातशाह, धन गुरु नानक साहब, गुरु ग्रंथ साहब महाराज, कृपा करो जिस कम ये जो आप जी ने कृपा बख्शिश कीती है, कृपा करो मेरा दे घर विच आओ, साडे ते अपनी दृष्टि करो और बख्शा करो। जिवें कबीर साहब कह रहे हैं, आप भी सारे कहो जेड़े जेड़े कह सकते हो।

धारंग मजे ब्रह्म तार तत हर को उपजे राग सारंग उकडे तान तरंग रंग अत ज्ञान गीत बंदानंग।

सत्संग जी गुरु रामदास पातशाह कल्याण मोहल्ला चौथा प्रभ की जय कृपा निधान हम हर गुण गावेंगे और ये जो है राग आप श्रवण कर रहे हो ये हमीर कल्याण है। गुरु पातशाह गुरु रामदास महाराज और जो ये रीत है बड़ी पुरातन रीत है पांच ताल दी बराबर दी सवारी है और अज छोटे छोटे बच्चे सामने बैठे हैं मैं कह जरा इन्हें भी हैरान करिए अज सो गुर दे दे के क्योंकि इस तरह ही बच्चे सीखते हैं उत्साह वधदा है गुण गाण नाल ही रब नाल

वचन कढ़िया है। किता पो अपना पहले कसन दिया जरण नहीं अब जगत गत गर्भ दिया है। मंदक से नखिया पड़खे पूजिया मूर्ख नाना।

जाओ कृपा गोविंद भई। When the Lord of the universe became merciful, सुख संपत हर नाम फल पाए सत गुर मिलई। When the Lord became merciful, I found peace, wealth and the fruit of Lord's name. I have met the true Guru. अपुष्ट बात ते पई सीधरी, दूत दुष्ट सजनई। That which was upside down has been set upright. The deadly enemies and adversaries have become friends. अंधकार में रतन परगासेओ, मलीन बुद्ध हचनई। In the darkness, the jewel shines forth, and the impure understanding has become pure. जाओ कृपा गोविंद पई, when the Lord became merciful. Sukh sampat har naam phal paaye sat gur milai. I found peace, wealth and the fruit of Lord's name and I have met the true Guru. Mohe kirpan ko koe na janat, sagal pavan pragatai. No one knew me, the miserable miser, but now I have become famous all over the world. संग बैठनो कही ना पावत हुन सगल चरण सेवई। बिफोर नो वन वुड इवन सिट विथ मी बट नाउ ऑल वर्शिप माय फीट। आड़ आड़ को फिरत ढूंढते मन सगल त्रिशन बुझ गई। आई यूज टू वॉन्डर इन सर्च ऑफ पेनीज बट नाउ ऑल द डिजायर्स ऑफ माय माइंड आर सेटिस्फाइड। एक बोल भी खवतो नाही साध संगत सीत लई। आई कुड नॉट बियर इवन वन क्रिटिसिज्म बट नाउ इन द साध संगत द कंपनी ऑफ द होली आई एम कूल्ड एंड सूथ। एक जी गुण कवन बखाने अगम अगम अगमई। वट ग्लोरियस वर्च्यूज of the inaccessible, unfathomable, profound Lord can one mere tongue describe. Das, Das, Das ko kariyo, jan nanak har saranai. Please make me the slave of your slaves. Servant Nanak seeks the Lord's sanctuary. Jau kirpa govind, sukh sampat har naam phal paaye, सत्पुर मिले।

पावन शब्द पावन राग साडे सत्कारयोग प्रोफेसर साहब प्रोफेसर अमर सिंह जी भाई साहब भाई सुरेंद्र सिंह जी जो भाई साहब भाई दया सिंह जी पटना साहब वाल दे प्राता साहब ने वह भी गुरु की हजूरी विच सुशोभित ने साडे हंसलो तो आए दलजीत सिंह जी वैनकूवर तो वीर जी आए ने तो बड़ा दर्शन दार संगत दे होए ने तो संगत वालों हुक्म आया सी कि राग 10 मिनट जरा ज्यादा लाने ने तो ये सोरठ राग दे विच आप जी ने शब्द सरवण किया है तो आओ दो तीन रीतां जरूर गायन करनिया सन पर संगत वालों हुक्म है एक दो रागां दी बंदिशां जरूर सरवण कराउणियां हन आओ इस तों पहला एक रीत फिर गायन करांगे पहला आओ एक नौ मात्र दी बंदिश है आप जी दे सन्मुख बहुत ही सुंदर है पुरातन चीज है और बड़े प्यार नाल सरवण करांगे।

सफल हो, मन में लायो पाओ सुख सहज आनंद घन। गुरबाणी गाव पाई, सुख सहज आनंद गणा, तब जपते दुख जाए

वैसे ऐसा है, अभी पहले चार ताल है, फिर एक ताला, उसके बाद रूपक से और अगे तीन ताल से सुलपा, मैं इशारा कर जाऊंगा थोड़ा थोड़ा, सुन लो, ये सुनने वाली है, उन्हें याद आवे ना आवे ऐसे कोई

को आस जगत गुरु की पार्स पेट पर्स करो रामदास गुरु हर सत की ओ समरथ गुर सिर हाथ तरे ओ कसुमल जाए हर

गुरु अमर गुरु श्री सत, कल डुग राखी पत अग्नि देखत गत, चरण कमल दास चरण कमल दास, सब विद्मान्यो मन तब ही पयो प्रसन्न, गुरु जोग तख्त दियन गुरु रामदास, नये रामदास सरी नये रामदास नये रामदास सरी दस सरी दस सर नये रामदास सरी नये रामदास नये रामदास सरी हम अब

नाइए राम दास सर जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटाजूट देख कियो फिरत अदास को सितन सतगुर सुख पयो।

प्यारे गुरुदेव जी, सच्चे पातशाह सतगुरु साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, आप जी अपने इस पवित्र शब्द दे विच ये विचार बख्श रहे हैं, जप हो ता एको नामा, अकाल पुरख वाहिगुरु का नाम जपो, जे नाम नहीं जपते अवर निराफल काम, बाकी सारे काम निराफल वो फ्रूटलैस हैं, उन्हां दा कोई भी फल नहीं है जे नाम नहीं जपते। इस करके दो पंक्तियां मैं आप जी दे सामने अर्ज कीतियां हन। एक, नाम बिना नरक कहीं न लेख है। नाम तो बिना इंसान किसे कम दा नहीं है, किसे कम दा नहीं, किसे लेखे च नहीं। और दूसरी, नाम बिना सूना घर बार, नाम तो बिना ए शरीर रूप जो कर है ये बिल्कुल सुन्ना है, और इस दे जो गुण हन इस काया रूपी कर दे वो नाम नु भुलाउण दे नाल हर बिसर तेरे गुण गले। महाराज जी ने ते बाणी च ए भी आख्या है

गुरु दे शब्द दी विचार दी असिस्टेंस दे नाल गाइडेंस दे नाल इस देही नू काढ़न, इस नू सही शेप च लिया, इस नू सही कंडीशन च लिया। सो उपदेश नंबर एक, एक देही दे लेवल ते वर्क करना है कि इस देही नू सोधना है।

हम इस देही दे अंदर है, जब यही तेरे ऑर्डर्स नहीं है, डिसिप्लिन दे विच नहीं है और यही अंदरों गली पई है, तो फिर नाम तू किमें प्राप्त करेगा। नंबर वन, देही नु सो, देही नु काड़, इस नु डिसिप्लिन दे विच लिया। देही तंग बहुत करती है, तो बाबा फरीद जी ने पूछा, महाराज आप जी ने की कीता, क्योंकि देही बहुत किस्म दी आवाजा मार दी, कदे कुछ चाहती है, कदे कुछ चाहती है, कदे कुछ चाहती है, क्योंकि इस दी आदता, इस दे टेस्ट्स, इस दे सुभा रस, जेते रस शरीर के तेते लगे दुख, पर बड़े किस्म दे रस हन जिन्हां दे नाल असी अपनी जो देही नू कमजोर बनाने हैं, इस नू खराब करते जाने हैं। और इसते अगर कोई बंदा मास्टरी नहीं करता तो ये बड़ी आलसी हो जाती है, बड़ी वीक हो जाती है, आलसी हो जाती है, फिर इस तो ज्यादा मेहनत नहीं होती, फिर थक जाती है। कहते इस देही नू सोध, इस दे नाल थोड़ा टफ हो। प्रीत साहब आखते हैं

ऐ मां मेरा मन मेरे वस च नहीं, साढ़े जेड़े ख्याल हैं वो बड़ी शक्ति रखते हैं, ख्यालों का एक ट्रैफिक है, समझ लो असी उस ट्रैफिक के दरमियान च खड़े हैं, वो ट्रैफिक सानू हिट करता है, कोई ख्याल किधर नू लै जांदा है, कोई किधर नू लै जांदा है, कोई किधर नू लै जांदा है, हरेक ख्याल का अपना इन्फ्लुएंस है, कोई ख्याल सानू डिप्रेस कर दिंदा है, कोई ख्याल सानू एंग्जाइटी दे दिंदा है, कोई ख्याल सानू सैड कर दिंदा है, कोई ख्याल सानू वरीड कर दिंदा है, सब ख्याल ही ख्याल हैं। मन जड़ा है वो टिकाओ च नहीं है, स्टिलनेस दे विच नहीं है। बहुत ध्यान दे नाल सुनना कि मन दे नाल फिर की कीता जाए, इसनू टुकान दी की विधि है, केड़ा अभ्यास है। आओ आप जिन्हू मैं दो तीन लाइना अज अर्ज करांगा उन्हां नू लैके ही प्रैक्टिस करना, ताकि सिंपल सिंपल टेक्निक्स अर्ज कीतियां जान, ताकि उन्हां नू आप एक्सरसाइज कर सको। लगातार 3-4-6 महीने तक एक्सरसाइज करन दे नाल यू विल फाइंड ए ग्रेट डिफरेंस इन योर क्वालिटी ऑफ माइंड एंड यू विल अचीव स्टिलनेस ऑफ माइंड। अभ्यास की है, बाणी च इस तरह आख्या,

अपने विचार अस्वारी कीजे। कहिंदे हुण तुसी अपने विचारां दे विच खोए पए हो, उन्हां नालों सैपरेट नहीं हो। विचार अते तुसी एक में खोए पए हो, विचार आंदा है तुसी उस दे विच रल जांदे। पर इत्थे टेक्निक ये दसी जा रही है कि अपने विचार अस्वारी कीजे, तुसी अलग हो जाओ विटनेस करने वाले, अपने आप नू सेपरेट कर लो, स्पेक्टेटर बन जाओ अते जो विचार है उना दे उत्ते सवार हो जाओ। दैट यू कीप आई ऑन योर एवरी सिंगल थॉट द मिनट इट क्रीप्स इन एंड व्हाट इट डज इनसाइड यू फॉर हाउ लॉन्ग इट स्टेज इनसाइड यू एंड देन हाउ द सेकंड थॉट इज फॉलोड बाय। कहते ट्राई टू सी द होल प्रोसेस ऑफ थॉट्स कमिंग एंड गोइंग। अपने विचार अस्वारी कीजिए, स्नान करके चौंकड़ा लगा के एकांत दे विच बैठ जाओ अते फिर अपने अंदर जिस तरह से बाहर कोई तुरिया फिरदा है उसनु देख सकते हैं। ख्याल भी तो अंदर तुरिया ही फिरदा है ना, ख्याल भी अंदर तुरिया ही फिरदा है। जिस तरह अपने मकान च कोई तुरिया फिरदा है असी अलग चेयर ते बैठ के सिर्फ उसनु वाच कर सकते हैं। टेलीविजन दे उत्ते तस्वीरां चल फिर रही हैं, तुर फिर रही हैं, असीं अलग चेयर दे उत्ते बैठ जाने हैं ते उस उन्हां नूं देखते हैं। इस तरह महसूस करो कि देयर इज अ ड्रामा ऑफ थॉट्स इज गोइंग ऑन एंड यू आर नॉट पार्ट ऑफ इट, यू आर जस्ट विटनेसिंग। अपने विचार असवारी कीजिए, अपने विचारां दे उत्ते असवारी करो, भाव के उन्हां नूं इनडिफरेंट होके उन्हां नालों अलग होके जस्ट वॉच दैम। सो पहली चीज तुसी की अचीव कीती है कि यू एंड थॉट हैव बिकम टू डिफरेंट थिंग्स, यू हैव टोटली डिसकोनेक्टेड यूअर सेल्फ फ्रॉम द थॉट्स। तुसी अपने आप में थॉट्स तो अलग कर ले, अपने विचार असवारी कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता की होएगा कि थॉट्स का ट्रैफिक आ रहा है, तुसी सिर्फ देख रहे हो कि थॉट आ रहा है ना, उस लई बुरा ख्याल बनाना क्योंकि ख्याल बनाओगे तो ख्याल च उलझ जाओगे, ना उस लई चंगा ख्याल बनाना, कोई ओपिनियन नहीं फॉर्म करनी, थिंकिंग नहीं करनी, जस्ट प्लेनली वाच देम। सिर्फ उन्हां नूं देखना है। अपने विचार अस्वारी कीजे दा मतलब है कि अलग होके सिर्फ उन्हां नूं देखो। तुसी कोशिश करके करन दी देखो कल तो सवेर तो, और फिर जदों भी वक्त मिले इस अभ्यास नु करना है। अपने विचार अस्वारी कीजिए, थॉट्स तो अलग होके सिर्फ उन्हां दा जो फ्लो है उसनु देखना है। जदों तुसी देखोगे, थॉट्स नु देखोगे, क्योंकि तुसी थॉट दे नाल कोऑपरेट नहीं कर रहे, उस दे विच एनर्जी नहीं पा रहे, उस दे नाल ज्वाइन इन नहीं कर रहे, इस करके वो थॉट जो है उत्थे अपने आप ही सीज हो जाएगा। थॉट नीड्स योर कोऑपरेशन एंड योर टोटल इन्वॉल्वमेंट, तां थॉट जो है वो स्प्रेड हुंदा है, वधदा है, अगां वधदा है। जे तुसी उस दे नाल ही न रले तो थॉट उत्थे सीज होना शुरू हो जाएगा, और उस तो बाद तुसी देखोगे कि विद इन सैकेंड्स एक होर थॉट आना शुरू होया। बट इन बिटवीन फर्स्ट थॉट एंड सैकेंड थॉट यू विल फाइंड ए वेरी स्मॉल गैप, फ्यू सैकेंड्स का गैप, अते उस गैप दे विच जदों के थॉट नहीं है की है, सिर्फ एक वाचर है जो कि विटनेस कर रहे हैं, जो कि देख रहे हैं। वो वाचर कौन है? वो साड़ी आत्मा है, वो साड़ी बीइंग। सो इन दोज ग्लिम्प्स वी एक्सपीरियंस अवर बीइंग फ्री फ्रॉम थॉट्स। तो जितना जितना ये अभ्यास बढ़ाते जाओगे
ਉਤਨਾ ਉਤਨੇ ਉਹ ਗੈਪਸ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੈਪਸ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਮੰਦਿਰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਵਸਾਈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵੰਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਚ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼, ਉਹ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ। ਸੋ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਰ, ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਸਵਾਰੀ ਕੀਜੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਅਚਾਨਕ ਪਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਟ ਦੇ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਫੌਰਨ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਔਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਥਾਟ ਆਵੇ, ਮਨ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆ ਪੰਕਤੀ ਬੋਲ ਦੇਣੀ, ਕਿਹੜੀ?

सुबह करके अरसात समुद्र की मत कहो। काट वनस्पति सगरी दिख गए हो के लेखन काज बन हो। सार सुता पकता करके जुग कोट गणेश के हाथ रखे हो। काल कृपा

तेरो अंत न कूट बराद हमारे अनक विधि समझाओ हम अज्ञान अलप मत थोरी तुम आपन बिरत रखाओ तुमरी शरण